0: Welcome back. Twisha's death has now sparked a massive outrage, even as Chorus for Justice grows and the SIT probes the alleged dowry death case. A new CCTV has emerged. The CCTV shows the final moments before Twisha's death. In the video, Twisha is seen climbing the staircase at her marital home. The footage also captures at least three men, including her husband Samarth Singh, administering failed CPR attempts before carrying her body down the stairs to a lower floor. Twisha's mother-in-law also appears in the video as well. On the other hand, mother-in-law and retired judge Giribala Singh has denied dowry harassment allegations. In fact, she has made some explosive claims. Giribala Singh has said that Twisha was on drugs and that she didn't want a child. Therefore, the 33-year-old took abortion pills. Not just that, the mother-in-law has also claimed that Twisha was irritable without narcotic substances and was undergoing psychiatric treatment and counselling. Meanwhile, the Bhopal police have announced a reward of 10,000 rupees for information leading to the arrest of Twisha's absconding husband, Samarth Singh. Earlier, his bail plea was also rejected.
1: Whatever it is, my welfare is certain. उसके मद जब भी इसने एमटीपीएस वर्क आई मीन अपनी इच्छा से कराई थी डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी उसको दवाइयां ऑलिजोप्राम जो शिजोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती उसने शुरू भी की थी एक आध दिन ठीक रहती थी लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था संडे के दिन दैट इज दो तीन दिन पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व किया हैंड्स पे थोड़ा शिवरिंग था विच इज टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम अप्रैल को हमारे यहाँ आ गई थी ठीक है उसके बाद ऑल हर सप्लाई ऑफ एनी ड्रग्स वॉज आउट लेकिन व्हेन वी हैड गॉन टू काकोली रॉय जी के पास हम लोग साथ को गए थे जब वो चाह रही थी वो फर्स्ट डे की प्रेगनेंसी को रिवर्स करे तो वो बार बार वो पूछ रही थी व्हाई डू यू वांट दिस और आपने ये कदम क्यों उठाया तब उसने मेरे सामने कहा आई हैव कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज मारुआना उनके सामने उसने कबूल किया मैंने लार्ज क्वांटिटीज में मारुआना कंज्यूम किया है
2: समर्थ सिंह ने और 1,82,000 रुपए श्रीमती गिरिवाला सिंह ने अंतरित किए हैं इलेक्ट्रॉनिकली लड़की के खाते में और 50,000 रुपए लड़की के भाई हर्षित शर्मा के खाते में उसकी शादी के अवसर पर तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि मैं 2,00,000 रुपयों के लिए उनको परेशान कर रहा था और FIR में मुझ पर इल्जाम है कि लड़की के पास हाथ खर्च के लिए पैसे नहीं थे इसलिए पिता कहते हैं कि मैंने पैसे ट्रांसफर किए मेरा इस स्तर पर यह प्रश्न उठा रहा हूं कि 7,50,000 रुपए 4-4.5 महीने के अंतराल में लड़की के खाते में गए आखिरकार उसको इतने पैसे कहां खर्च करने पड़ रहे थे ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति उसको पैसों के लिए परेशान कर रहा था ये दनादन पैसे किसी को दे रहे थे क्या मुझे नहीं मालूम मैं जानना चाहता हूं इसलिए मैंने आज न्यायालय में आवेदन लगाया कि बैंक स्टेटमेंट निकालिए पता चले कि ऐसा तो नहीं आप यहां इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं असल दोषी कोई और कहीं बैठा हुआ है
0: So these are the latest visuals that have emerged. These are CCTV visuals in which Twisha can be seen going downstairs. And on the staircase, we can see three men in these visuals. In fact, the mother-in-law also appears.

0: Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।

0: Now, as the world continues to face the brunt of a raging war in West Asia, fuel prices have gone up once again. This, viewers, is the second hike in a week's time. Petrol and diesel prices have gone up by 4 rupees in less than a week. Today, petrol and diesel prices were raised by about 90 paise per litre. In Delhi, petrol now costs close to 99 rupees, up from what was 97, while diesel has increased to 91.58 from 90. In Mumbai, petrol has risen by 91 paise to 107 per litre and 94 paise to 94 rupees for diesel a litre. Kolkata has recorded the sharpest petrol hike of 96 paise, taking the price of 2 rupees 109.70 per litre. Diesel prices have climbed by 94 paise to 96 rupees. In Chennai, petrol price has gone up by 82 paise to 104.49 per litre. Diesel increased by 86 paise to 96.11 per litre. The latest revision comes days after fuel prices were raised by rupees 3 per litre on Friday, amid rising global crude oil prices linked to the ongoing West Asia conflict and disruptions around the Strait of Hormuz.
1: Second time in the last 5 days, the petrol and diesel prices have gone up in India and in the national capital. If you live in national capital, the petrol has become 87 paisa costlier. So you'll have to end up spending 98 rupees 64 paisa depending on which petrol pump you are going to for every litre of petrol that you fill in your vehicle. For a diesel vehicle, you will have to spend 91 rupees 58 paisa per litre. So there's 91 paisa of increment in that particular regard. Now, the people in general were sort of prepared for this situation to unfold. Pradhan Mantri ne appeal bhi ki thi, indhan ki khapat kam karni hai. To ek tarah se indication tha ki jo kharab din hai, is lihaz mein petrol diesel ki kimton ke lihaz se.
2: Wo to unhone bola tha, but unhone ye bhi kaha tha ki hybrid mode ya work from home pe switch kar sakte hai, but even though I'm working for the government only, but these people are relentless. They won't allow.
1: You haven't shifted to work from home.
2: No, hybrid. Not even hybrid.
1: Not even hybrid.
2: Yeah.
1: Time to spend more money for a lesser petrol. That's what people do realize, and they do understand that in the times to come, the prices of everything that they consume is going to go up from here. The people are also talking about as to how the Prime Minister did appeal about reducing the consumption of fuel, but the offices are yet to shift to work from home or hybrid mode, more so in the private sector. With video journalist Anurag Saxena, this is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi.
3: हाँ, दो दिन पहले बढ़े थे, CNG पे भी बढ़ चुके हैं. वो तो इतनी सस्ती, उस पे ही बढ़ा दिए और पेट्रोल पे बढ़ा दिए. बहुत महंगाई होती जा रही है. इतनी महंगाई में देखो 90 पैसे इतना महंगा कर दिया इन्होंने, 98 कर दिया है. अब लोग कैसे चलेंगे? अमीर लोगों के लिए तो कुछ है नहीं, तो बेचारे गरीब लोगों उनके लिए तो बहुत नुकसान है ना ये चीज़. हर चीज़ में महंगाई होती जा रही है, घटने की जगह. बताओ इस सरकार के साथ क्या करा जाए.
4: बहुत अच्छा किया, क्योंकि देश को तो लूटना उनका काम ही है. अब अपना टैक्स तो घटाते नहीं, पेट्रोल डीजल पे आधा तो उनका टैक्स ही है. अब लड़ाई हुई है, जो भी हुआ है, गवर्नमेंट अपना टैक्स कम करे. पब्लिक को क्यों चूस रही है? हर मामले में टैक्सेस ही बढ़ा रही है. सब पे असर पड़ेगा. अब आप देखिए ना, हर चीज जो है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, आटा दाल चीनी जो भी चलेगा वो बढ़ेगा ही, उसका रेट कम कैसे होगा? फिर कहेंगे इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये हो गया, फिर स्टिमुलस लाएंगे. अपने टैक्सेस कम करें ना, सबसे पहले जीरो टैक्स करें फ्यूल पे, देखो कैसे इकोनॉमी भागती है.
5: दिक्कतों से गुजर रहे हैं, झगड़ा चल रहा है उधर, इधर सरकार की मजबूरी है, इसमें कोई दोष नहीं. पड़ जाए फिर भी मिल तो रहा है ना. ये देखो, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन समझे नहीं. ना मिलने से तो अच्छा मिल रहा है, कैसे कैसे करके मोदी जी ला ही रहे हैं ना.
6: सो व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? ट्रंप इज मैड एंड ही इज डूइंग ऑल दिस, दैट इज व्हाई. सो व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? सेम गवर्नमेंट, इफ द ऑपोजिशन विल स्क्रीम नाउ, व्हेन दे वर देयर, दे शट डाउन द पंप्स. ओके, सो दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल

0: Service and logistics charges will also increase. The total monthly impact in a rough estimate would be about 300 to 800 rupees extra. Of course, this is an estimated impact on a four-member family for a month. Remember, it's not just the fuel prices, it's also the cascading effect that it has on essential commodities, given that logistics also will see a surge in prices with fuel prices going up. It is going to have undoubtedly an impact on our groceries and also on essentials like our dairy sector, for example. Movement of these goods also at the end of the day will get more expensive. Using cabs and other vehicles will also, in fact, get more expensive eventually, and that is going to lead to an overall inflation is an area of concern. It's been a hike that has been seen, the second one in less than 5 days. So as the world continues to face the brunt of the raging war in West Asia, fuel prices have gone up once again in the country, the second hike in a week. Petrol diesel prices have gone up by 4 rupees in less than a week. Petrol diesel prices were raised by about 90 paise per litre today. In Delhi, the petrol now costs 98.64 per litre, up from 97.77. Diesel has been increased to 91.58, up from 90.67. In Mumbai, petrol rose by 91 paise to 107.59 per litre. Diesel by 94 paise to 94.08 for a litre is what we know. More news coming in. This is the first time on television NEET paper that leaked. The leaked NEET guest paper images on India Today. Images of the leaked NEET paper on India Today. Handwritten leaked guest paper has been accessed by us. Chemistry questions in the leaked NEET paper. Remember, there's been a huge furore over not once, a number of times when the NEET paper has been leaked. India Today has now accessed the leaked NEET paper. The chemistry questions in the leaked NEET paper that we have accessed. Images of the leaked NEET paper on India Today. These are images on your screens at this point in time. The first time on TV where the NEET paper that has been leaked. I'm going to go straight across to my colleague Sarath, getting in more details on that story at this point in time. Ye paper, jo guest paper hai, jo leak paper hai, wo is samay humne access kiya, aur kya bata sakte hain aap investigations ke baare mein bhi, Sarath?
1: देखिए, इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो यह है कि जो पूछताछ हुई है पीवी कुलकर्णी ने और मनीषा ने, उन्होंने ये पेपर जो तैयार करने के बाद, उनका एक्सेस था पीवी कुलकर्णी का, जो 5 सेट तैयार हुए थे और जो फाइनल 2 सेट तैयार होते थे, वो दोनों सेट के पास एक्सेस था और ये घर लाकर उसको हाथ से लिखकर इन्होंने बना लिया है और पीडीएफ ये पुणे, नासिक और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से होते हुए सीकर पहुंचा था, जयपुर के जमवा रामगढ़ पहुंचा था। अब पीवी कुलकर्णी के का लिंक एनटीए में किस किस से है, किसके जरिए पीवी कुलकर्णी पिछले 7 साल से 2019 से वो पेपर सेटर थे और 2019 से ये काम कर रहे हैं, पहली बार ये काम कर रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब सीबीआई पता कर रही है। एनटीए में कौन इनको ये जिम्मेदारी दिया था, यही नहीं, ये जो पेपर बनते थे मराठी ट्रांसलेशन भी यही करते थे, तो ट्रांसलेशन करने की वजह से सभी 5 सेट तक एक्सेस था और लास्ट में जो 2 सेट तैयार होते थे, 1 सेट बैंक में रहता था और 1 सेट जाता था सेंटर पे, सेंटर में अगर कोई दिक्कत हो जाती तो बैंक वाला यूज करने के लिए, और दोनों सेट के पास पीवी कुलकर्णी का एक्सेस था और 7 साल से वो एनटीए में है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस तरह से हाथ से लिखकर बाहर लाकर पीडीएफ बनाकर बेचा जाना बाजार में, कोचिंग माफियाओं को अपने सर्किट के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा देश के दूसरे सभी राज्यों में, कभी कभी देखिए करीब करीब सभी राज्यों में ये पेपर गए हैं। फिलहाल जो सीबीआई है उनका, उनको एनटीए और पेपर सेटर और महाराष्ट्र नेटवर्क का खुलासा कर रही है, धीरे धीरे देश भर में फैले इस नेटवर्क का भी खुलासा होगा, क्योंकि ये काफ़ी संगठित नेटवर्क था। ये तो सीकर में जो पेपर खरीद कर लाया था उसके बेटे के लालच की वजह से ये खुलासा हो गया, वो आकर आगे बेचने लगा, यही वो पेपर था, पीडीएफ था जो आगे बिक रहा था, जिसमें 135

0: G+5. So having no sanction plan, the authorities have now started demolishing that very construction, which was work in progress. And it's not only in Howrah, but in multiple locations across the state, especially in Howrah and Kolkata, we are seeing that it's a drive being carried out by the state government. And Shubhendu Adhikari also had categorically stated that any illegal activities or any illegal building will not be tolerated if it poses threat to life or danger. Then that building would be demolished, and that's the fallout that we are witnessing in multiple locations. Several locations in Howrah have also been identified by civic authorities, which will be demolished in days to come as well. Back to you.
1: I'm going to leave it at that for the moment. Tapas with the very latest on that story. Shifting focus a little more about Tushar's death, which has sparked massive outrage. Even as the chorus for justice grows, the SIT probes the alleged dowry death case. New CCTV images have emerged. It shows the final moments of Tushar's death. In the video, she can be seen climbing the staircase at her marital home. The footage captures at least three men, including her husband, Samarth Singh, administering failed CPR attempts before carrying her body down the stairs to a lower floor.
2: न कर पाए मुझे तो ऐसा लगता कि वो और असुख उन मुझसे ज्यादा तो उनका असुख है जब व्हेन दे हैव मैनेज्ड ऑल द टीवी प्लेटफॉर्म्स दे हैव स्टार्टेड जस्टिस फॉर त्विशा कैंपेन जस्टिस तो वो कहां थे ये 5 महीने में अगर उनको लग रहा था बच्चे परेशान है तो क्यों नहीं आए एक भी बार
3: अच्छा आपने एक बात कल भी एक बात कही थी राज भी थे कि वो त्विशा कहती थी कि मैं आपके लायक नहीं हूं इस तरह से आपको बात कही कि हम मैंने धोखा दिया है
2: उसने उसने 17 तारीख शी नेवर सेड मैं आपके लायक नहीं हूँ शी सेड
3: वैसी नहीं जैसे आप लोग समझते हैं
2: वैसी नहीं हूँ जैसा आप समझते हैं
3: आपको लगता है कि कुछ गिल्ट था उसको कि क्या था कि
2: उसका ये था देखो वो जब आई थी मिलने मुझसे इन आई थिंक समवेयर इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च तब आई थी यहाँ आई थी घर पेरेंट्स नहीं आए थे पेरेंट्स तो कहीं जाके अगस्त में आए थे जबकि हम एक बार फिर मई में गए थे हमने कहा इनका फैमिली बैकग्राउंड भी देखें ये एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं क्योंकि आजकल ऑनलाइन मोड से लोग बहुत मिलते हैं पता नहीं कोई मदर आर्टिफिशियल फादर आर्टिफिशियली डोंट नो सो एक बार देखने गए थे और इसने क्योंकि उस समय बताया यस मुझे बच्चे बहुत पसंद है आई विल हैव एटलीस्ट 4 चिल्ड्रेन अम्मा आई लव दिस मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है लेकिन सुबह मैं जैसे वॉक करके आती थी पौधों पर पानी डाला वो कभी कभी देखती नहीं थी पौधों की तरफ आई सेड यार त्विशा तुम तो बताती पौधे बहुत पसंद है तुम कभी आई मीन एंड वी लव प्लांट्स इसीलिए तो मैंने हम यहाँ से लेकर ऊपर इवन पुलिस ने जब लॉक कर रखा था ऐसे मेरे पौधे मर जाएंगे यू डू योर वर्क आप जितना कर सकते हो मेरे लिए तो हर पौधा इज अ लिविंग एंटिटी हमें बचाना है उसको बट इसका ये जो इट वॉज अ कम्प्लीट फार्स इट वॉज अ कम्प्लीट नाटक या तो वो नहीं समझती थी या उसके अंदर वो जो दो व्यक्ति हैं वो उसको आड़े आते थे एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं लेकिन पौधों की देखरेख नहीं करना बच्चे नहीं पैदा करने हैं एंड मुझे कुकिंग भी अच्छा लगता है लेकिन कुकिंग में ले अगर बोलो क्या आई जस्ट सेड सुपरवाइज क्योंकि खाना बनाने वाले तो लोग हैं यहाँ पर तो नहीं नहीं हमको नोबडी विल प्रेशराइज मी खाने के लिए बोलो तो मुझसे तो नहीं समर्थ को बोला कि तुम लोग क्या समझते मैं भैंस हूँ जो बस खाऊं और बच्चे पैदा करूं मुझसे नहीं कहा बट देन आई सेड ठीक है मैं बोलूंगी भी नहीं बट इट्स गुड कि हम लोग सब बैठ के एक टेबल पर बैठते हैं खाना खाते हैं चार बातें भी होती हैं लेकिन उसका एक ये अवॉइडेंस वाला स्थिति थी क्योंकि उसको लगता था क्योंकि इसकी जो दो हस्बैंड्स को लोग लड़कियां बहुत इजीली कन्विंस करते हैं
3: भाई
2: समर्थ उनके पिताजी को इतना मैंने छोटी ओछी बात तो हमारे हम लोग के तो बातचीत के जरिए में है ही नहीं हो सकता वो हाथरस में इस तरह से बोलते होंगे जिस तरह से ये लोग ऐसा ऐसा करके वो कर रहे हैं इट्स नॉट हमारी जुबान का हमारे डायलेक्ट का हिस्सा ही नहीं हो सकता कैसे होगा देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल
3: मैडम आप जज रही हैं काफी लंबे समय तो कानून प्रक्रिया में आपको विश्वास है समर्थ को आपको नहीं लगता कि पेश होने जाना चाहिए फिर इसका सामना करना चाहिए
2: बिल्कुल आएगा देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल उसको तो ही रिस्पेक्ट्स द लॉ बिकॉज वो खुद एक लीगल बैकग्राउंड से है लेकिन अपने स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है और स्पेशली जब पूरा अंदेशा है कि जिस तरह से माहौल है ही विल बी पुट बिहाइंड बार्स तो एटलीस्ट उसके जो राइट्स हैं ऐसा केस में जिसमें कुछ कुछ भी नहीं है जो डिस्चार्ज लाइक केस है जिसमें उल्टा हमें सिंपथी मिलना चाहिए उसमें वो अपना अपने अपने एक्सरसाइज तो करेगा जो

0: के एडवोकेट उसको
1: जमानत के लिए भी कोशिश करेंगे कि आप पेश होते हैं,
0: वो मेरे एडवोकेट करेंगे। ठीक है,
2: समर सिंह ने और 1,82,000 रुपए श्रीमती गिरिवाला सिंह ने अंतरित किए हैं इलेक्ट्रॉनिकली लड़की के खाते में और 50,000 रुपए लड़की के भाई हर्षित शर्मा के खाते में उसकी शादी के अवसर पर। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि मैं 2,00,000 रुपयों के लिए उनको परेशान कर रहा था और FIR में मुझ पर इल्जाम है कि लड़की के पास हाथ खर्च के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पिता कहते हैं कि मैंने पैसे ट्रांसफर किए। मेरा इस स्तर पर यह प्रश्न उठा रहा हूं कि 7,50,000 रुपए 4-4.5 महीने के अंतराल में लड़की के खाते में गए, आखिरकार उसको इतने पैसे कहां खर्च करने पड़ रहे थे? ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति उसको पैसों के लिए परेशान कर रहा था, ये दनादन पैसे किसी को दे रहे थे क्या? मुझे नहीं मालूम, मैं जानना चाहता हूं, इसलिए मैंने आज न्यायालय में आवेदन लगाया कि बैंक स्टेटमेंट निकालिए, पता चले कि ऐसा तो नहीं आप यहां इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, असल दोषी कोई और कहीं बैठा हुआ है।
3: We have now the other side of the story also that is being now communicated through the mother-in-law of Twisha. We also have that CCTV footage you see on your screen to this point in time. But viewers, what can't be ignored is this conversation that Twisha also had with her mother, in which she says, I am extremely distressed. These people are despicable. They are suspicious of me. Samarthi Vinas, whose child I am carrying. Twisha tells her mother in this conversation, come here and take me away. These people won't let me live. Then tells her mother, my life has become a living hell. These people are very cruel. Samarth doesn't even speak with me properly. That's what she said in that conversation with her mother. Well, as far as this case is concerned, the in-laws of Twisha have got another very different sort of a story to tell, and that CCTV footage also that we have access shows how attempts were made perhaps to revive her after she was found. These are images on your screen that you see of the final moments where Twisha was headed upstairs, moments later brought down, and then attempts to revive her. The mother-in-law, in their defense, has spoken about the fact that she indicated that she was on drugs and that mentally she was not okay, and that she said something and did something else altogether. Also, in fact, questioned Twisha's family members, saying that where were they all this while when their daughter actually needed help? That's the question that Twisha's mother-in-law is asking. More news coming in. Let's take a look. And Twisha's depression treatment trail has now surfaced, where India Today is at the clinic linked to Twisha's case. She had consulted a psychiatrist. Consultation papers have been accessed. Twisha's treatment prescription, a prescription now under spotlight. In fact, this has taken another turn, with the mental health angle also emerging. Remember, the in-laws had claimed and made a claim about schizophrenia. This claim under scanner now. Take a look at this Crown report.
4: Twisha मौत मामले में Twisha की सास गिरिबाला सिंह ने सोमवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने Twisha पर मानसिक रूप से बीमार होने का गंभीर आरोप लगाया। इसके साथ ही सास गिरिबाला सिंह ने भोपाल के एक मनोचिकित्सक का नाम भी लिया और बताया कि इस मनोचिकित्सक के पास Twisha का इलाज भी चल रहा था। आज तक इस वक्त उसी क्लिनिक पे पहुंच गया है जो डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जहां पे बतौर मनोचिकित्सक हैं, इसी क्लिनिक पे बताया जा रहा है कि Twisha का इलाज चल रहा था। Twisha की सास के मुताबिक Twisha जो है वो सिज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से पीड़ित थी, और इसीलिए जो मशहूर मनोचिकित्सक हैं सत्यकांत त्रिवेदी, उनके पास उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, और इस वक्त हम उसी क्लिनिक पे मौजूद है। हालांकि इस बारे में जब हमने डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी तरीके से इसमें बात करने से इनकार कर दिया है, और इस वक्त अगर आप देखें तो हम जिस क्लिनिक पे हैं उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर कि यहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज होता है, और इसके साथ ही मूड स्विंग एवं बाइपोलर लोग। ये मूड स्विंग जो है ये यहाँ पे हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जो Twisha की सास है उन्होंने भी अपने बेल ऑर्डर में इस बात का जिक्र किया है कि त्विशा जो है वो डिप्रेशन में थी, मूड स्विंग उसके होते थे और जब भी वो दिल्ली से वापस आती थी तो उसका व्यवहार परिवार के लिए, मतलब त्विशा के ससुराल के लिए पूरे तरीके से बदल जाता था, भले ही वो त्विशा की सास हो, त्विशा का पति समर्थ हो। और इस बीच में हम आपको बता दें कि भले ही डॉक्टर ने इस पर बात नहीं की हो आज तक से, लेकिन हमारे पास आज तक के पास इस समय वो पर्चा मौजूद है जिसमें बकायदा त्विशा का नाम भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें तारीख लिखी हुई है 30 अप्रैल 2026 को त्विशा यहाँ पे आई थी। ये नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है त्विशा शर्मा का। तो त्विशा जो है यहाँ पे पहुँची थी, उसने यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया था सत्यकांत त्रिवेदी को, बदले में कुछ दवाइयाँ सत्यकांत त्रिवेदी की तरफ से लिखी गई थी। हालांकि सास गिरिबाला सिंह का कहना है कि दवाइयाँ प्रिस्क्राइब तो हुई थी त्विशा को, लेकिन उसने वो दवाइयाँ ली नहीं थी। तो जाहिर सी बात है अब ये मामला धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा उलझता जा रहा है, दो परिवारों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। और इस बीच आज तक पहुँच गया उस क्लिनिक में जहाँ सास गिरिबाला की तरफ से दावा किया गया है कि उनकी बहू त्विशा का मानसिक बीमारी, डिप्रेशन, एंजाइटी को लेकर के और मूड स्विंग को लेकर के इसी क्लिनिक के डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी के यहाँ ट्रीटमेंट भी चल रहा था। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल।
3: All right, we'll continue to get you more details on that story to tell our viewers. The husband in question, Samarth, continues to be absconding. His bail plea also has been rejected. More on that in just a bit. We are pausing for a quick commercial break.
5: You are watching India Today.
6: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.

0: A less common but dangerous variant of Ebola first identified in 2007. So how does Ebola spread? Unlike COVID-19 or the flu, Ebola is not airborne. It spreads through direct contact with body fluids of an infected person, including blood, saliva, sweat, vomit and urine. The virus can spread through contaminated needles, clothing, bed sheet, unsafe burial practices. Scientists believe fruit bats are the natural host of the virus. Symptoms usually appear before 2 and 21 days after.
1: And the latest development just coming in the Twisha case. My colleague Ravish Pal, who spoke to Twisha's mother-in-law, who has been making explosive claims against Twisha and why she decided to take her life. Listen in to what she has said.
2: If you don't mind, chalte kar le, ma'am.
1: That is Twisha's mother-in-law in the frame where India Today is trying to speak to her. Remember, she has made explosive claims against Twisha. So much so that she said that Twisha was unhappy as soon as she knew of her pregnancy. She has also said that Twisha was consuming marijuana, the usage of drugs that led her to this mental condition. She has also said, and remember, this is not just the mother-in-law, but even the family by and large that is claiming that Twisha suffered from schizophrenia. Now, India Today has also accessed the prescription of Twisha by her psychiatrist, and we are trying to get to further details as investigation continues. But the family that has made explosive claims against Twisha and why she decided to take her life. Remember, the family is in a tough spot given the sort of messages that Twisha had sent to her friend, of what she had been saying to her family, of how she was feeling trapped, of how she was unhappy, of how she wanted to leave from Bhopal and come to her parental home. But unfortunately, all of that did not happen. And Twisha decided to take her life. A case of abetment to suicide that has been pressed against the family. Remember, the husband of Twisha, who is on the run, and Twisha's mother-in-law, who has made these explosive claims saying that she consumed drugs, she was taking the help of a psychiatrist, she was unhappy because of her pregnancy news, and she decided to take an abortion pill. Let's listen to what she's
2: saying. Giribala Singh ji, baat karne ke liye jo aarop Twisha ke parivar ki taraf se lagaye gaye the, kafi kuch baatein unhone press conference mein bhi kal kahi, lekin parivar abhi tak antim sanskar nahi karwane ke liye shav le raha hai. Is par aapko kya lagta hai, kyunki ab to ek hafte se upar ho gaya.
3: Mujhe to aisa lagta hai just mounting pressure. They chah rahe hain ki Samarth jail chala jaye, they chah rahe hain ki meri bail anticipatory kharij ho jaye, chah rahe hain ki sab jitna galat ho sakta hamare sath ho, jabki hamara to ek उसूल रहा है कि जो हमारे पास आया, हमारे संसर्ग में आए, लोग कहते थे आपका तो माइडस टच है, जो आपके संसर्ग में आता उसका कुछ बेहतर ही बन के जाता है. मेरे ख्याल से मेरे को यही गलत फहमी थी कि बच्चे के साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन इनके सब दखल, इनके कारनामों के कारण आज बच्चे की इवन सुकून नहीं मिल पा रहा, उस बच्चे को मिट्टी नहीं मिल पा रही है.
2: आपने मैम कल भावुक होते हुए ये भी कहा था कि हर परिवार चाहता है कि उनके घर में एक छोटा बच्चा है, और कल जब प्रेगनेंसी को लेकर के आपने बात की, उस वक्त आपने भावुक होते ये भी कहा कि बच्चा वो चाहती नहीं थी और इसलिए उसने एमटीपी ट्रीटमेंट लिया.
3: उसने तुरंत शुरू कर दिया था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा ऐसा लगता मुझे मार रहा है, मुझे मैं मर जाऊंगी अगर बच्चा होगा, ये उसने शुरू किया. तो वी सेड लेट अस गो इन फॉर प्रॉपर काउंसलिंग. एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है. एक अगर बालिग स्त्री कहे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए आफ्टर मैरिज, तो कोई तो कारण होगा, और कोई कारण जानने के लिए वो सिंगल सेशन भी हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी गई. तो उसका वहीं से तो शुरू हुआ, हमें जानकारी हुई कि शी वॉज कंज्यूमिंग मारुआना, उसने एडमिट किया मेरे सामने.
2: सिज़ोफ्रेनिया का कब पता चला मैम?
3: एंजाइटी का लिखा है उसके पर्चे में, और जो दवाई दी ओलिज़ेप्राम, अगर आप उसको वो चेक करेंगे तो दैट इज गिवन फॉर ऑल दीज पेशेंट्स, मैनिक डिप्रेशन एंड सिज़ोफ्रेनिया. ठीक है, मैं एक्सपर्ट नहीं उस दिशा में, तो इसलिए वही कर बता पाएंगे. यस,
2: आप लोगों ने 8 लाख रुपए करीब जो है ट्रांसफर किए, जिसकी बैंक डिटेल्स भी आपने कोर्ट में सबमिट कराई हैं. क्या आपके एडवोकेट की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि बैंक डिटेल्स निकलनी चाहिए तुषार?
3: बिल्कुल निकलनी चाहिए. वी नीड टू नो वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है.
2: आप लोगों 2 लाख लगाए उन्होंने,
3: और 2 लाख रुपए तो हम क्यों मांगेंगे? देयर इज नो यूपीआई ट्रांजेक्शन जो वो दे रहे हैं, हम क्यों मांगेंगे 2 लाख? इस माय सैलरी, तो हम क्यों मांगेंगे एक इस तरह से पैसा, जब हम ऐसे परिवार से जो हम अपना राइट्स भी रिलिंक्विशमेंट करके बैठे हैं ससुराल पक्ष से भी, तो देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल।
2: जो एलिगेशन उनकी मां का लगा रही है कि मेरी बात हो रही थी तुषा से, अचानक से फोन कट गया, देन सडनली हाफ एन आवर के बाद पता चलता है कि वो नहीं रही, ये इन एलिगेशन।
3: मदर ने जैसे ही फोन किया हम तुरंत हम लोग तो सब ऊपर नीचे जा रहे थे, दौड़ रहे थे, कहां गई, तो अब देखा बिटिया को, तो देन वी ट्राई टू सेव हर। तो इसलिए इस तरह से उनका हरकत, इट्स रियली बैड, इट्स कॉज्ड लॉट ऑफ पेन।
2: लेकर के फिर क्या लग रहा है आपको, कब, क्योंकि बेल तो खारिज हो गई अग्री,
3: हमारे एडवोकेट विल सी, न्यायिक प्रक्रिया होगा जो भी होगा।
2: जो आरोप लगाने की इन्फ्लुएंशियल लोग हैं आप लोग, इसलिए वो पोस्टमार्टम,
3: तो लगता है उन्हीं के इन्फ्लुएंस के तहत ये मामला भी दर्ज हुआ है। इन्फ्लुएंस तो हमारा कहाँ है, मेरा इतना इन्फ्लुएंस होता तो FIR भी नहीं होती। ऐसा होता तो हम अपने घर के अंदर की, ऐसा क्या होता कि हम बॉडी को इस तरह से करते, देरा ये आपको मालूम है हाउ द वर्ल्ड इज टुडे, हम क्यों ऐसा करते भाई।
2: जो आपके साथ एम्स में हुआ, आप बता रहे हैं जब आप गए तो आपको लोगों को, लोग जो पीछे दौड़े आप लोगों के, फिर आपने पुलिस को कॉल किया वहां।
3: हाँ, वी हैव सम वीडियो क्लिपिंग्स आल्सो ऑफ द सेम। मुझे थाने में रिपोर्ट करनी पड़ी, लेटर मैंने मेल किया, क्योंकि इस तरह से मैंने उसका लड़का जो सो कॉल्ड दो लोग उसको पकड़े थे, आई विल किल देम, आई विल, इस तरह से आक्षेप हमारे ऊपर दौड़ रहा। फादर तो माँ बहन की इससे बुरी गाली दे रहा था, आई डोंट इवन नो ऐसा उसके अर्थ भी क्या है, इतनी बुरी गाली दे रहा था वो।
2: इतना चौड़ा करियर रहा मैम, इतना सब कुछ रहा, आपने कभी सोचा था इस तरीके से सब होगा, मतलब दो परिवारों के बीच? तो
3: समझती हूँ कि देखो ये ऐसे पारिवारिक विवाद कई बार जो बिगड़ते हैं, जो बिकॉज मन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड, हमें बहुत सारा कुछ वर्क करना चाहिए ऑन साइकियाट्री, और जब परिवारों के बीच में ऐसा होता है तो पूरा सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए, पहले अंत्येष्टि होनी चाहिए और फेयरली चर्चा होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का कुछ मामला होता है उसमें दखल नहीं करना चाहिए, ये धरना प्रदर्शन एकदम अन्यायिक प्रक्रिया है।
2: ये जो त्रिशा को आपने कहा था कि
3: आप धरना नहीं दे पा रहे तो वी आर रॉन्ग, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं एड्रेस कर पा रहे इसलिए वी आर रॉन्ग, आई एम अवॉइडिंग ऑल ऑफ दिस।
2: आपने कल ये भी कहा था कि एक गलती बस आपसे हो गई त्रिशा को समझने में, क्योंकि शुरुआत में जब आप मिले थे तो जो संस्कार थे त्रिशा के, खाना खाने से पहले भगवान को याद करना, तमाम चीजें, फिर बाद में कहा कि वो आपकी फॉल्ट,
3: बत्ती सब कर बंद कर दी सर, अब हमको तो शंकर जी मिल गए, शंभू हमारे समर्थ, हमारे शंभू है, तो उसने सब पूजा वूजा सब बंद कर दी, कुछ भी नहीं कर रही थी वो, अपने हिसाब से रह रही थी, लॉट ऑफ, अब मैं बोलती थी कि मैं जॉब्स ढूंढ रही हूँ, आई सेड यू व्हाई डोंट यू, बिकॉज कितना हम लोगों की लॉ की ही बात होती, आई वांट टू स्टडी द लॉ, लॉ की किताबें आ गई, इस साल से उसका दाखिला हो जाता, कम्युनिटी मीडिएशन के लिए उसको एनलिस्ट कर लिया था लीगल सर्विस अथॉरिटी से, बट इट्स टॉल लाइक टॉकिंग अगेंस्ट अ वॉल कई बार।
2: रिकॉर्ड्स निकले मैम, किससे बात करती थी वो आप बताए, देर देर तक फोन, हेडफोन लगा,
3: अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं, किससे बात हो रही थी, ठीक है।
2: तो ये थे गिरिबाला सिंह जी, जिन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं त्रिशा के ऊपर, परिवार के ऊपर भी, और साफ किया है कि जो कुछ भी परिवार को देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, और एक तरीके से इस पूरे परिवार को इन दिनों जो परेशानियां देखनी पड़ रही है इन आरोपों की वजह से, उस पर भी खास बातचीत की है आज तक से।
1: And those are the details that have come in from Twisha's mother-in-law. Twisha's death that has sparked a massive outreach in the latest focus that is on her mental health angle and the doctor's prescription that has been accessed by India Today, where, remember, Twisha's in-laws have claimed that she suffered from schizophrenia. Now, her family is devastated. They refuse to perform the last rites until justice is given for Trisha, as her mother-in-law has also claimed that Trisha consumed marijuana. She was taking psychiatric help. She had admitted to the family that she had consumed marijuana, and the family has claimed, the mother-in-law in specific who just spoke to India Today said that they had never demanded any dowry, as has become the premise of this particular case. Now, a lot of evidence, especially in terms of the last messages that Trisha exchanged with her friends, with her family. She had been saying to her family that she's feeling trapped, and she said that they were pressurizing her for dowry. But the in-laws were claiming that Trisha did not want a child, and that is why she wanted to terminate that pregnancy. That is the reason she had consumed that abortion pill. India Today's Anjali Pandey, who spoke to Twisha's parents, who continue to demand justice for their daughter's death. Listen in to what they had said.
0: रेखा जी, आपकी आखिरी बात त्विशा से कब हुई थी? क्या त्विशा ने आपको बताया कि क्या कुछ त्विशा को झेलना पड़ रहा है, क्या कुछ सहना पड़ रहा है अपने ससुराल में? क्या कभी इस तरीके का जो भी टॉर्चर झेलना पड़ता था, इस बारे में कोई बातचीत हुई थी?
4: हाँ जी, 10-15 दिन से ज्यादा हो रहा था। वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू तो पढ़ी लिखी नहीं है, तू तो कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब जॉब छूट गई मेरी बेटी की। फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था, तो इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया, बिल्कुल गवार है तू, गवार है बिल्कुल, कुछ भी बोलता था। गाली भी उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी मेरे को इतना कुछ उसने सुना। 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था
0: जी। रेखा शर्मा जी, क्या आप लोगों ने एक बार ससुराल जाके मैटर सॉल्व करने की या ससुराल वालों से बात करने की कोशिश की हो?
4: हम एक बार गए थे, जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे, ये फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ, तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की, तो उनकी मदर इन लॉ ने गिरीवाला सिंह ने हमारी टिकट कैंसिल करा दी। मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए, तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी, मम्मी बोली कोई बात नहीं आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा। तो हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहती है कि भाई दोनों अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे, कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में
0: जी।
4: फिर 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद, तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल
0: जी।
4: जिस दिन मेरी बेटी 12 तारीख को खत्म हुई है तो रात को हम लोग वहां से आ रहे हैं, वहां पर मेरे रिलेटिव से हमने यहाँ पे भोपाल में रहते हमने उनको भेजा, फिर वो घर पे भी गए उनको पुलिस को लेके कि भाई जहाँ पे वो खत्म जिस जहाँ पे मारा है वो जगह सील किया जाए, तो वहां पर गए तो बोले गिरीवाला सिंह बोल रही है मेरी बेटी को तो एम्स में छोड़ दिया, फिर वो घर पे आ गई है, बोले जल्दी जल्दी चेक कीजिए और जाइए यहाँ से, हमें रेस्ट करना है, तब किसी की बेटी वहां पे हॉस्पिटल में पड़ी अकेली लावारिस से वो उनको रेस्ट करना है
0: जी। रेखा जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, मैं भी एक बेटी हूँ, आई एम ऑल्सो अ डॉटर एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द ग्रीफ एंड पेन यू मस्ट बी गोइंग थ्रू। हमारी पूरी सहानुभूति है आपके साथ इस लड़ाई में, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, एंड वी ऑल्सो वॉन्ट दैट एक्शन नीड्स टू बी टेकन अगेंस्ट द इन लॉज, इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरीड आउट थरली एंड एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द अक्यूज इन दिस केस। So there you hear India Today getting you both versions of the story in Twisha's case, what the parents are claiming and what the in-laws are claiming. Remember, Twisha's husband, who is on the run as the police is on a lookout for him. But Twisha's parents, who seek justice for their daughter, she unfortunately ended her life. What exactly was she going through? All the angles that are now being explored, this as Twisha's mother-in-law has squarely put the blame on Twisha, saying that her mental health was not in the right space. She was also consulting a psychiatrist. She was on drugs, and the pregnancy is something that she never wanted, which is why she consumed an abortion pill. But that in complete contradiction to the sort of messages that Twisha had exchanged with her friend and family. Remember, she was in touch with her family an hour before she unfortunately decided to take her life, and the family is now claiming that Twisha had claimed that her in-laws had asked her for dowry. They used to harass her from time to time, and that is why she was feeling the mental pressure. Twisha's in-laws, who say that this is the least of the concerns, as the lawyer is now claiming that they had put a certain amount of 8 lakh rupees into her account, and they are also now wanting to get to the bottom of that. But the focus is also on Twisha's mental health. India Today, in fact, having accessed that prescription of the psychiatrist that Twisha used to consult. Because remember, Twisha's in-laws have also claimed that she suffered from schizophrenia,
1: what exactly is the truth, as this is a case that has shocked the entire nation, and we stand with the daughters of our nation seeking justice for Twisha. My colleague Ravish, who has been on the ground getting us details of what exactly was brewing within the family, and what does the CCTV footage reveal? Take a look at this report.
2: त्विशा मौत मामले में त्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने सोमवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने त्विशा पर मानसिक रूप से बीमार होने का गंभीर आरोप लगाया। इसके साथ ही सास गिरिबाला सिंह ने भोपाल के एक मनोचिकित्सक का नाम भी लिया और बताया कि इस मनोचिकित्सक के पास त्विशा का इलाज भी चल रहा था। आज तक इस वक्त उसी क्लिनिक पे पहुंच गया है जो डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जहां पे बतौर मनोचिकित्सक हैं, इसी क्लिनिक पे बताया जा रहा है कि त्विशा का इलाज चल रहा था। त्विशा की सास के मुताबिक त्विशा जो है वो सिज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से पीड़ित थी और इसीलिए जो मशहूर मनोचिकित्सक हैं सत्यकांत त्रिवेदी, उनके पास उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था और इस वक्त हम उसी क्लिनिक पे मौजूद है। हालांकि इस बारे में जब हमने डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी तरीके से इसमें बात करने से इनकार कर दिया है और इस वक्त अगर आप देखें तो हम जिस क्लिनिक पे हैं उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर कि यहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज होता है और इसके साथ ही मूड स्विंग एवं बाइपोलर लोग। ये मूड स्विंग जो है ये यहाँ पे हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जो त्विशा की सास है उन्होंने भी अपने बेल ऑर्डर में इस बात का जिक्र किया है कि त्विशा जो है वो डिप्रेशन में थी, मूड स्विंग उसके होते थे और जब भी वो दिल्ली से वापस आती थी तो उसका व्यवहार परिवार के लिए, मतलब त्विशा के ससुराल के लिए, पूरे तरीके से बदल जाता था, भले वो त्विशा की सास हो, त्विशा का पति समर्थ हो।

जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 से ही भारत को स्वावलंबी, भारत को विश्व का एक साझेदार, एक ट्रस्टेड पार्टनर बनाने में सफलता प्राप्त की है, पूरे देश भर से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, स्वदेशी सामान, स्वदेशी सेवाएं लोगों को प्रोत्साहित करें, इस उद्देश्य के साथ स्वदेशी मेला 12 से 15 अगस्त भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक के बाद एक श्रृंखला में जो बाकी FTAs हैं, जो अभी तय हुए हैं लेकिन जिनके पेपर वर्क और लीगल डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं, वो एक के बाद एक लागू होते जाएंगे, जैसे आगे आने वाले दिनों में, अगले 5 साल में भारत ने प्रण लिया है कि हम $2 ट्रिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट भारत से करें।

0: The new installment also reunites several familiar faces from the earlier films. Alongside Mohanlal, actors Meena, Ansiba Hassan and Esther Anil reprise their iconic roles. However, one of the biggest talking points surrounding the franchise is the upcoming Hindi adaptation starring Ajay Devgan.
1: विजय का केस वापस गरम हो गया, पुलिस सॉलिड एक्शन में।
2: अरे हर साल यही सुनते आए हो, पुलिस यहाँ खोद रही है, वहाँ खोद रही है, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं।
3: पापा, वो पुलिस आ रही है।
0: The makers have confirmed that the Hindi version of Drishyam 3 will not be a scene-to-scene remake of the Malayalam original and is expected to follow a completely different narrative, treatment and screenplay.
4: जो कुछ दिखाया उससे मुझे एक बात समझ में आ गई है। इस दुनिया में हर किसी का सच अलग है, हर किसी का सही अलग है। मेरा सच, मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। जब तक सब थक नहीं जाते, जब तक सब हार नहीं जाते, मैं यहीं खड़ा हूँ।
0: Meanwhile, with just days left for release, excitement around George Kutty's return continues to soar higher than ever.
5: अद तगड़े बंदर खटा मंदा पाओ, मन्नम बिन्नम चिंती क्या था प्रवृत्ति चुमाई, अद नेटे लायरक के बेदरी किन्दन ना जमंड सिला किला, इप्पो पेड़िया सादे।
0: Entertainment Bureau, India Today.
5: इतु बोले नहीं आरक्षण टन देनी कारी नहीं।

0: FOMO.
1: अरे अरे, बच्चे कैसे जाते हैं इसमें?
2: बच्चे घर से करके आते हैं और फिर इमरजेंसी होता है तो रोक लेते हैं, नहीं रुकता है तो इतना बड़ा खेत पीछे है ही।
3: प्रधान जी गोली से बच गए तो बच गए, इसके अंदर जाएंगे तो शायद ना बच पाए।
4: Who would have thought that a sleepy village and a reluctant government employee would steal the internet's heart?
5: क्लाउड अंकल ध्यान रखिएगा लड़के का, परेशान है।
6: क्या सर?
5: क्या हुआ?
6: अरे
5: भाई केस की वजह से पहले एग्जाम बहुत बढ़िया हो गया हो, लेकिन अगर केस वापस नहीं हुआ तो एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है।
7: देखिए बनराकस कितना सातिर आदमी है, वहां मारतम सब लोग ना कर रहे थे, इस सबको छोड़ के अरे भला मानुष का नाम केस में डाल दिया।
8: हेला थप्पड़ भी तो मैंने ही चलाया था।
4: बट पंचायत एग्जैक्टली डिड दैट।
9: डिमांड में कुछ और भी बदलाव है क्या?
10: वरना ना, लेकिन आप लोग जा कहां रहे हैं?
11: घोड़ा लाने जा रहे हैं, चाहिए ना?
4: And now the wait for the next chapter is finally over. After months of speculation following the explosive ending of season 4, the makers have officially confirmed that season 5 is on its way.
12: Perfume leo andar se car ka. Are brand? Are wo la raha hai. Kaun sa brand te dekh le? Kaun sa brand? Kitna chota likha hua hai. Aur ek kaun sa?

0: Welcome back. Just hours after TMC's Falta candidate Jahangir Khan withdrew from the repolls, Trinamool Congress has now issued an official statement on the withdrawal by Jahangir Khan. Trinamool Congress has said that the decision taken by Jahangir Khan to withdraw from the Falta repoll is his personal decision and not that of the party. Since the election results were declared on 4th of May, more than 100 of our party workers have been arrested in Falta Assembly constituency alone. Several party officers have been vandalized, shut down and forcibly captured in broad daylight through intimidation, while the EC continues to turn a blind eye despite repeated complaints. The TMC statement further says that our fight against the Bangla Virodhi BJP will continue both in West Bengal and in Delhi. Trinamool Congress, they're making a big statement on Jahangir Khan's withdrawal. And India Today also is bringing you Kalyan Banerjee's comment on this story. Kalyan Banerjee has spoken on camera about Jahangir Khan's withdrawal.
1: हमारे साथ इस वक्त है कुणाल घोष. कुणाल दा, ये जो जहांगीर खान जिसे पुष्पा कहा जा रहा था वो अब मुखर गए, चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या कहेंगे?
2: देखिए, हम लोग भी सुना है, डिटेल तो अभी नहीं पता, लेकिन ये पार्टी के लिए बहुत खराब हुआ, बैड, ये नहीं होना चाहिए. और ये वहाँ पे कोई डर का महल, ये भाजपा ईसी ये डर का महल पैदा किया या नहीं किया? और अगर किया तो पुष्पा तो झुकेगा नहीं, तो झुक गया क्यों ये भी देखना होगा. तो वो तो डायमंड हार्बर वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का अंडर में है हमारा, ऑनरेबल अभिषेक बैनर्जी का वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और ये फलता से उनका लीड बहुत बहुत ज्यादा था. तो ऐसा क्यों हुआ अभिषेक बैनर्जी जी वो एनालाइज कर रहे होंगे. तो
1: कुणाल दा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि डायमंड हार्बर टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है और जहांगीर खान टीएमसी स्ट्रांग मैन माना जाता है, वहां से अभिषेक बैनर्जी का इतना बड़ा लीड मिला, लेकिन अभिषेक बैनर्जी भी नहीं दिखे वहां पे कैंपेनिंग के लिए.
2: ये तो पार्टी वर्कर्स का भी ये क्वेश्चन है क्यों नहीं ऑनरेबल एमपी वहां पर गया, लेकिन ये उनका खुद का डिसीजन है, ये उनका स्ट्रेटेजी है, उनका जो इलाका है. ये डायमंड हार्बर तो ये तो वो उनका खुद का इलाका है.
1: इस भी जाता था डायमंड हार्बर मॉडल,
2: ये डायमंड हार्बर मॉडल भी काम तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, वो पार्टी एनालाइज करेगा.
1: तो कुणाल घोष, तृणमूल कांग्रेस के नए निर्वाचित एमएलए आप देख सकते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ताज्जुब है कि जो जिसको पुष्पा कहा जाता था, जो क्लेम करते हैं कि वो पुष्पा है, वो झुक कैसे गए. और उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस का जो सबसे टॉप लीडरशिप है, तृणमूल कांग्रेस एमपी अभिषेक बैनर्जी, जिनका गढ़ माना जाता है डायमंड हार्बर इलाका, वहां से फलता कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे रिपोल होना था वहां पे तृणमूल कांग्रेस का कैंपेन

सीन भी नहीं दिखा। अभिषेक बनर्जी भी पिछले दो हफ्ते में जब से चुनाव का रिजल्ट पश्चिम बंगाल में नहीं आया, सरकार का बदल यहाँ पे हुआ है, तब से वो भी नहीं दिखे वहां पे। इन सब पर सवाल या निशाना खुद तृणमूल के अंदर उठाना शुरू कर चुके हैं।

0: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
1: After multiple assassination attempts, they can't even get...
2: They're reliable.
3: Always when I need them.
0: To live sports action.
4: One-hand jam by LeBron on the break.
5: That's another three, Steph Curry.
0: And your favorite music.
6: Well, the dawn begins to crack.
0: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
7: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
8: It's your boy,
7: just
8: Jay-Z.
7: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: ऑफिस है मेरे लिए तो घर ही है. कभी यहाँ बारात टिकवा देते हैं, कभी किसी को हगने भेज रहे हैं. मतलब क्या प्रधान जी,
10: साला रोड ही बवासीर है. प्रधान जी ने पिछले इलेक्शन में वादा किया था.
11: यू गेट पंचायत.
12: ए विनोद, ए माधव, यार इलो प्रसाद.
13: प्रसाद
14: इसका नया चाल है.
13: अब हर चीज में चाल नहीं होता है माधव, प्रसादी है. ले लिया जाए.
11: इट शुक अप द इंटरनेट.
15: यही दिक्कत है तुम्हारा, तुम पिघलते बड़ा जल्दी.
16: शौचालय के साफ सफाई करने का सही वक्त भी आ गया.
11: इट रूल्ड द चार्ट्स एंड इट लेफ्ट मिलियंस गास्पिंग फॉर मोर.
9: बच्चे कैसे जाते हैं इसमें?
17: बच्चे घर से करके आते हैं और फिर इमरजेंसी होता है तो रोक लेते हैं. नहीं रुकता है तो इतना बड़ा खेत पीछे है ही.
18: प्रधान जी गोली से बच गए तो बच गए, इसके अंदर जाएंगे तो शायद ना बच पाए.
11: Who would have thought that a sleepy village and a reluctant government employee would steal the internet's heart?
19: क्लॉड अंकल ध्यान रखिएगा, लड़के का परेशान है.
9: क्या सर,
19: क्या हुआ?
9: अरे
19: वही केस की वजह से. पहले एग्जाम बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन अगर केस वापस नहीं हुआ तो एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है.
9: देखिए बनराकस कितना सातिर आदमी है. वहां मारतम सब लोग ना कर रहे थे, इस सबको छोड़ के अरे भला मानुष का नाम केस में डाल दिया.
20: हेलो थप्पड़ भी तो मैंने ही चलाया था.
11: बट पंचायत एग्जैक्टली डिड दैट.
9: डिमांड में कुछ और भी बदलाव है क्या?
21: ना ना, लेकिन आप लोग जा कहां रहे हैं?
22: घोड़ा लाने जा रहे हैं, चाहिए ना.
11: एंड नाउ द वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर इज फाइनली ओवर. After months of speculation following the explosive ending of season 4, the makers have officially confirmed that season 5 is on its way.
23: Perfume leo andar se car ka. Are brand? Are wo la raha hai. Kaun sa brand te dekhne? Kaun sa brand? Ye kaun chota likha hua hai? Aur fir ye kaun sa
24: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 से ही भारत को स्वावलंबी, भारत को विश्व का एक साझेदार, एक ट्रस्टेड पार्टनर बनाने में सफलता प्राप्त की है। पूरे देश भर से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, स्वदेशी सामान, स्वदेशी सेवाएं लोगों को प्रोत्साहित करें, इस उद्देश्य के साथ स्वदेशी मेला 12 से 15 अगस्त भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक के बाद एक श्रृंखला में जो बाकी FTAs हैं, जो अभी तय हुए हैं लेकिन जिनके पेपर वर्क और लीगल डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं, वो एक के बाद एक लागू होते जाएंगे। जैसे आगे आने वाले दिनों में, अगले 5 साल में भारत ने प्रण लिया है कि हम $2 ट्रिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट भारत से करें।

0: सात महीने में एक भी राज्य ने, एक भी डिस्ट्रिक्ट ने, एक भी गली ने उनका ऑर्डर माना नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने हाथ धोकर के कह दिया कि आज के बाद हमारे पास मत आइए, आप जाइए हाईकोर्ट में, तो अब देखा जाएगा।
1: डिसअपॉइंटेड है आप?
0: नहीं, मैं तो खुश हूँ। ये होना ही नहीं था, मैं तो होना ही नहीं था, क्योंकि जो ऑर्डर्स उन्होंने दिए हैं, कोई राज्य का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको अमल नहीं कर सकता है। एक तो एक रुपया सरकार ने नहीं डाला है, दूसरा कोई भी शेल्टर्स इन सात महीनों में बनाने हैं, तीसरा जो आप कह रहे हो कि रेलवे स्टेशन से कुत्ते हटाओ, आप जाकर के देखिए कैसे हटा सकते हैं हम लोग। लोग आते खाने के साथ, दरवाजे हर वक्त खुले हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि कुत्ते नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बंदर आएंगे, कुत्ते आएंगे, जहाँ खाना मिलता है वहीं जानवर आता है।

0: हमारे पास है रिकॉर्ड्स, हमें पता है कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए गए। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं एक मृत्यु पे, एक मृत्यु जो डिजीज है, आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, किस बेसिस पे? ये आपकी सोच दिखाते हैं। आप उनके मेंटल हेल्थ पे, आप उनके कैरेक्टर पे, आप उनके पास्ट पे, आप उनके एक्शंस पे जो आरोप लगा रहे हैं। आपके जिस तरह से बात की जा रही है मिसेस गिरबाला सिंह से, एक दौर में 7 दिन तक एक आंसू नहीं आई है, बाहर नहीं आई है, और अचानक से जब बेटे की बेल रिजेक्ट हो गई तो काफी उनके आंसू बहाए जा रहे हैं जो मुझे दिखे नहीं।
1: जो सबसे सीरियस एलिगेशन जो उन्होंने लगाए थे बेल ऑर्डर के दौरान भी और कल भी उन्होंने लगाए हैं कि वो मारुआना का कंज्यूम करती थी त्रिशा, और ये उन्होंने कहा कि खुद त्रिशा ने उन्हें बताया।
0: यस, ये जो बोल रही है ना, अगेन आई विल से टू यस, शी इज अ लायर एंड अ मैनिपुलेटर हु कैन अक्यूज अ डेड टू सच अ लेवल। वो इतनी गंदी लेवल पे स्टूप हो चुकी है कि उन्हें अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट बाहर आ चुकी है, पुलिस हैज सबमिटेड विच शोज नो ट्रेस ऑफ एनी ड्रग इन हर बॉडी।
2: लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं।

जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 से ही भारत को स्वावलंबी, भारत को विश्व का एक साझेदार, एक ट्रस्टेड पार्टनर बनाने में सफलता प्राप्त की है। पूरे देश भर से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, स्वदेशी सामान, स्वदेशी सेवाएं लोगों को प्रोत्साहित करें, इस उद्देश्य के साथ स्वदेशी मेला 12 से 15 अगस्त भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक के बाद एक श्रृंखला में जो बाकी FTAs हैं, जो अभी तय हुए हैं लेकिन जिनके पेपर वर्क और लीगल डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं, वो एक के बाद एक

लागू होते जाएंगे, जैसे आगे आने वाले दिनों में अगले 5 साल में भारत ने प्रण लिया है कि हम $2 ट्रिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट भारत से करें।

0: हमारे पास है रिकॉर्ड्स, हमें पता है कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए गए। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं एक मृत्यु पे, एक मृत्यु जो डिजीज है, आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, किस बेसिस पे? ये आपकी सोच दिखाते हैं आप उनके मेंटल हेल्थ पे, आप उनके कैरेक्टर पे, आप उनके पास्ट पे, आप उनके एक्शंस पे जो आरोप लगा रहे हैं। आपकी जिस तरह से बात की जा रही है मिसेस गिरबाला सिंह से, एक दौर में 7 दिन तक एक आंसू नहीं आई है, बाहर नहीं आई है, और अचानक से जब बेटे की बेल रिजेक्ट हो गई तो काफी उनके आंसू बहाए जा रहे हैं जो मुझे दिखे नहीं।
1: जो सबसे सीरियस एलिगेशन जो उन्होंने लगाए थे बेल ऑर्डर के दौरान भी और कल भी उन्होंने लगाए हैं कि वो मारुआना का कंज्यूम करती थी त्रिशा, और ये उन्होंने कहा कि खुद त्रिशा ने उन्हें बताया।
0: यस, ये जो बोल रही है ना, अगेन आई विल से टू यस, शी इज अ लायर एंड अ मैनिपुलेटर हु कैन अक्यूज अ डेड टू सच अ लेवल। वो इतनी गंदी लेवल पे स्टूप हो चुकी है कि उन्हें अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट बाहर आ चुकी है, पुलिस हैज सबमिटेड व्हिच शोज नो ट्रेस ऑफ एनी ड्रग इन हर बॉडी।

0: a reluctant government employee would steal the internet's heart.
1: Cloud uncle, ध्यान रखिएगा लड़के का, परेशान है।
2: क्या सर?
1: क्या हुआ?
2: अरे
1: भाई केस की वजह से पहले एग्जाम बहुत बढ़िया हो गया हो, लेकिन अगर केस वापस नहीं हुआ तो एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है।
3: देखिए बनराकस कितना सातिर आदमी है, वहां मारतम सब लोग ना कर रहे थे, इस सब को छोड़ के अरे भला मानुष का नाम केस में डाल दिया।
2: हेलो थप्पड़ भी तो मैंने ही चलाया था।
0: But पंचायत exactly did that.
4: डिमांड में कुछ और भी बदलाव है क्या?
5: वरना ना, लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे हैं?
6: घोड़ा लाने जा रहे हैं, चाहिए ना?
0: And now the wait for the next chapter is finally over. After months of speculation following the explosive ending of season 4, the makers have officially confirmed that season 5 is on its way.
7: गाड़ी से कार का परफ्यूम ले आओ अंदर से कार का। अरे ब्रांड, अरे वो ला रहा है। कौन सा ब्रांड तो देख ले, कौन सा ब्रांड? इतना छोटा लिखा हुआ है और फिर ये कौन सा?

जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 से ही भारत को स्वावलंबी, भारत को विश्व का एक साझेदार, एक ट्रस्टेड पार्टनर बनाने में सफलता प्राप्त की है। पूरे देश भर से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, स्वदेशी सामान, स्वदेशी सेवाएं लोगों को प्रोत्साहित करें, इस उद्देश्य के साथ स्वदेशी मेला 12 से 15 अगस्त भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक के बाद एक श्रृंखला में जो बाकी एफटीएज हैं, जो अभी तय हुए हैं लेकिन जिनके पेपर वर्क और लीगल डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं, वो एक के बाद एक लागू होते जाएंगे, जैसे आगे आने वाले दिनों में, अगले 5 साल में भारत ने प्रण लिया है कि हम $2 ट्रिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट भारत से करें।

0: medicines linked to schizophrenia treatment. At the same time, a new CCTV video showing Trisha's final moments before her death has intensified the controversy even further.
1: The death of Trisha Singh, who was found hanging at her marital home in Bhopal on May 12th, raises several disturbing questions. While protests demanding justice grow louder, investigators are now examining fresh evidence, including CCTV footage and medical documents linked to psychiatric treatment. The CCTV video from her marital home shows Trisha's final moments before her death. In the video, Trisha is seen climbing the staircase inside the house. Later, at least three men, including her husband, Samarth Singh, are seen attempting CPR before carrying her body downstairs. Trisha's mother-in-law, retired district judge Giribala Singh, can also be seen in the footage. The video has now become a crucial part of the probe being carried out by the special investigation team on allegations of dowry harassment and suspicious death. But even as questions mount around the circumstances leading to Trisha's death, the family of the accused has strongly denied all charges. Trisha's mother-in-law has made a series of sensational claims. She alleged that Trisha was dependent on narcotic substances, was undergoing psychiatric counseling and treatment, and became irritable without drugs. Trisha's parents have rubbished charges leveled by Giribala Singh.
2: दस पंद्रह दिन से ज्यादा हो रहा था वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को कुछ भी बोलता था कुछ भी सुनाता था फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की तो उनकी मदर इन लॉ ने गिरीवाला सिंह ने तेरा हमारी टिकट कैंसिल करा दी मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो गर्मियों में सर्दियों में आना थोड़ी बारिश वारिश हो जाए तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी मम्मी बोली कोई बात नहीं आप थोड़े दिन बाद आ जाना बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा फिर 13 तारीख को बेटी का फोन आया नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल
3: मुझे तो ऐसा लगता है जस्ट माउंटिंग प्रेशर दे चाह रहे हैं कि समर्थ जेल चला जाए दे चाह रहे हैं कि मेरी बेल एंटीसिपेटरी खारिज हो जाए चाह रहे हैं कि सब जितना गलत हो सकता हमारे साथ हो इनके सब दखल इनके कारनामों के कारण आज बच्चे की इवन सुकून नहीं मिल पा रहा उस बच्चे को मिट्टी नहीं मिल पा रही है उसने तुरंत शुरू कर दिया था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए मुझे बच्चा ऐसा लगता मुझे मार रहा है मुझे मैं मर जाऊंगी अगर बच्चा होगा ये उसने शुरू किया तो वी सेड लेट अस गो इन फॉर प्रॉपर काउंसलिंग एक अगर बालिग स्त्री कहे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए आफ्टर मैरिज तो कोई तो कारण होगा और कोई कारण जानने के लिए वो सिंगल सेशन भी हो सकते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी गई तो उसका वहीं से तो शुरू हुआ हमें जानकारी हुई कि शी वॉज कंज्यूमिंग मारुआना उसने एडमिट किया मेरे सामने
1: Meanwhile, pressure is mounting on the police to arrest Trisha's husband, Samarth Singh, who remains absconding. His anticipatory bail plea was rejected on Monday. For Trisha's family and protesters on the streets, question remains unchanged. Was this a case of sustained harassment leading to death? And is an attempt being made to shift the narrative after the tragedy? Bureau Report, India Today.
4: Are watching India Today.
5: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Tune In is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop. The music.

0: सात महीने में एक भी राज्य ने, एक भी डिस्ट्रिक्ट ने, एक भी गली ने उनका ऑर्डर माना नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने हाथ धोकर के कह दिया कि आज के बाद हमारे पास मत आइए, आप जाइए हाईकोर्ट में, तो अब देखा जाएगा।
1: डिसअपॉइंटेड है आप?
0: नहीं, मैं तो खुश हूँ। ये होना ही नहीं था, मैं तो होना ही नहीं था, क्योंकि जो ऑर्डर्स उन्होंने दिए हैं, कोई राज्य का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको अमल नहीं कर सकता है। एक तो एक रुपये सरकार ने नहीं डाला है, दूसरा कोई भी शेल्टर्स इन सात महीनों में बनाने हैं, तीसरा जो आप कह रहे हो कि रेलवे स्टेशन से कुत्ते हटाओ, आप जाकर के देखिए कैसे हटा सकते हैं हम लोग। लोग आते खाने के साथ, दरवाजे हर वक्त खुले हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि कुत्ते नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बंदर आएंगे, कुत्ते आएंगे, जहाँ खाना मिलता है वहीं जानवर आता है।
2: Sorry.

0: क्योंकि वो इनको ही ना सुनाने के, मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा। फिर 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद। तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल।
1: मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जस्ट माउंटिंग प्रेशर, दे चाह रहे हैं कि समर्थ जेल चला जाए, दे चाह रहे हैं कि मेरी बेल एंटीसिपेटरी खारिज हो जाए, चाह रहे हैं कि सब जितना गलत हो सकता है हमारे साथ हो। इनके सब दखल, इनके कारनामों के कारण आज बच्चे की इवन सुकून नहीं मिल पा रहा, उस बच्चे को मिट्टी नहीं मिल पा रही है। उसने तुरंत शुरू कर दिया था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा ऐसा लगता है मुझे मार रहा है, मुझे मैं मर जाऊंगी अगर बच्चा होगा, ये उसने शुरू किया। तो वी सेड लेट अस गो इन फॉर प्रॉपर काउंसलिंग। एक अगर बालिग स्त्री कहे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए आफ्टर मैरिज, तो कोई तो कारण होगा, और कोई कारण जानने के लिए वो सिंगल सेशन भी हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी गई, तो उसका वहीं से तो शुरू हुआ। हमें जानकारी हुई कि शी वॉज कंज्यूमिंग मारुआना, उसने एडमिट किया मेरे सामने।
2: Meanwhile, pressure is mounting on the police to arrest Trisha's husband, Samarth Singh, who remains absconding. His anticipatory bail plea was rejected on Monday. For Trisha's family and protesters on the streets, question remains unchanged. Was this a case of sustained harassment leading to death? And is an attempt being made to shift the narrative after the tragedy? Bureau Report, India Today. And with that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching. For more news and updates, you can log into indiatoday.in or check out the India Today app.
3: You are watching India Today.
4: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.

0: leading to Trisha's death, the family of the accused has strongly denied all charges. Trisha's mother-in-law has made a series of sensational claims. She alleged that Trisha was dependent on narcotic substances, was undergoing psychiatric counseling and treatment, and became irritable without drugs. Trisha's parents have rubbished charges leveled by Giribala Singh.
1: दस पंद्रह दिन से कुछ ज्यादा हो रहा था. वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था. फिर अभी 13 तारीख को बोली, मम्मी आप आ जाओ प्लीज, मुझे ले जाओ. तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की. तो उनकी मदर इन लॉ ने, गिरीवाला सिंह ने, तेरा हमारी टिकट कैंसिल करा दी. मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए. तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी. मम्मी बोली कोई बात नहीं, आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के, मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा. फिर 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को. 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद. तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल.
2: मुझे तो ऐसा लगता है जस्ट माउंटिंग प्रेशर, दे चाह रहे हैं कि समर्थ जेल चला जाए, दे चाह रहे हैं कि मेरी बेल एंटीसिपेटरी खारिज हो जाए, चाह रहे हैं कि सब जितना गलत हो सकता हमारे साथ हो. इनके सब दखल, इनके कारनामों के कारण आज बच्चे की इवन सुकून नहीं मिल पा रहा, उस बच्चे को मिट्टी नहीं मिल पा रही है. उसने तुरंत शुरू कर दिया था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा ऐसा लगता मुझे मार रहा है, मुझे मैं मर जाऊंगी अगर बच्चा होगा, ये उसने शुरू किया. तो वी सेड लेट अस गो इन फॉर प्रॉपर काउंसलिंग. एक अगर बालिग स्त्री कहे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए आफ्टर मैरिज, तो कोई तो कारण होगा. और कोई कारण जानने के लिए वो सिंगल सेशन भी हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी गई. तो उसका वहीं से तो शुरू हुआ, हमें जानकारी हुई कि शी वॉज कंज्यूमिंग मारुआना, उसने एडमिट किया मेरे सामने.
0: Meanwhile, pressure is mounting on the police to arrest Trisha's husband, Samarth Singh, who remains absconding. His anticipatory bail plea was rejected on Monday. For Trisha's family and protesters on the streets, question remains unchanged. Was this a case of sustained harassment leading to death? And is an attempt being made to shift the narrative after the tragedy? Bureau Report, India Today.
3: Are watching India Today.
4: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
5: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
4: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.

0: सात महीने में एक भी राज्य ने, एक भी डिस्ट्रिक्ट ने, एक भी गली ने उनका ऑर्डर माना नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने हाथ धोकर के कह दिया कि आज के बाद हमारे पास मत आइए, आप जाइए हाईकोर्ट में, तो अब देखा जाएगा।
1: डिसअपॉइंटेड है आप?
0: नहीं, मैं तो खुश हूँ। ये होना ही नहीं था, मैं तो होना ही नहीं था, क्योंकि जो ऑर्डर्स उन्होंने दिए हैं, कोई राज्य का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको अमल नहीं कर सकता है। एक तो एक रुपया सरकार ने नहीं डाला है, दूसरा कोई भी शेल्टर्स इन सात महीनों में बनाने हैं, तीसरा जो आप कह रहे हो कि रेलवे स्टेशन से कुत्ते हटाओ, आप जाकर के देखिए कैसे हटा सकते हैं हम लोग। लोग आते खाने के साथ, दरवाजे हर वक्त खुले हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि कुत्ते नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बंदर आएंगे, कुत्ते आएंगे, जहां खाना मिलता है वहीं जानवर आता है।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
3: Oh, sorry.

बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के, मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा। फिर 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद। तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल।

0: जेल चला जाए, चाह रहे हैं कि मेरी बेल एंटीसिपेटरी खारिज हो जाए, चाह रहे हैं कि सब जितना गलत हो सकता हमारे साथ हो। इनके सब दखल, इनके कारनामों के कारण आज बच्चे की इवन सुकून नहीं मिल पा रहा, उस बच्चे को मिट्टी नहीं मिल पा रही है। उसने तुरंत शुरू कर दिया था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा ऐसा लगता मुझे मार रहा है, मुझे मैं मर जाऊंगी अगर बच्चा होगा, ये उसने शुरू किया। तो वी सेड लेट अस गो इन फॉर प्रॉपर काउंसलिंग। एक अगर बालिग स्त्री कहे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए आफ्टर मैरिज, तो कोई तो कारण होगा, और कोई कारण जानने के लिए वो सिंगल सेशन भी हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी गई। तो उसका वहीं से तो शुरू हुआ, हमें जानकारी हुई कि शी वॉज कंज्यूमिंग मारुआना, उसने एडमिट किया मेरे सामने।
1: Meanwhile, pressure is mounting on the police to arrest Trisha's husband, Samarth Singh, who remains absconding. His anticipatory bail plea was rejected on Monday. For Trisha's family and protesters on the streets, question remains unchanged. Was this a case of sustained harassment leading to death? And is an attempt being made to shift the narrative after the tragedy? Bureau Report, India Today.
2: Watching India Today.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
5: You're listening to CNBC.
6: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
7: Keep it on smooth jazz.
8: This is Roots Reggae
9: exclusively on TuneIn.
10: This is classic hip-hop
11: exclusively on TuneIn.
4: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.